0: सुनो 91.7 FM कतार्स फेवरेट रेडियो स्टेशन चेन्नई बीट्स
1: तमिल हिट ऑफ द आवर
2: इन द आर्ट तो पोदुमा कुलंदा

0: रेडियो सुनो 91.7 FM कदर्स फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो सुनो
1: ये बिरयानी नंदा नल्ला दम्मट्टा बिरयानी आ पूप बिरयानी ने कोंडल्ले जान परन नल्ला मलबारला बिरयानी तुमने किलालो कोने पोरी पोरी पोरी पोरी

0: रेडियो सुनो 91.7 FM
1: कतर्स फेवरेट रेडियो स्टेशन
2: सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई